0: और उस स्पेस के अंदर का जो वो गुफा के अंदर की जगह जो है वो स्पेस है, उसमें जो समाया हुआ है वह आत्मा है.
1: Spontaneity is a precious Hindu quality. This poet composed an ode to Swamiji on the spot.

0: Even though physically absent, Guruji was inevitably the centre of all attention. A photobiography of Guruji's life was solemnly presented.
1: Swamiji, Madanaji Maharaj Sahib to aaj hamare beech mein nahi hai kyunki wo swasth labh kar rahe hain aisa bataya gaya. Par unka sandesh hamare beech mein hai, aapke beech mein hai. Lambe samay tak kaise unhone wo kaam kiye jisse ki aatmik sukh mile, आत्मा को शांति मिले, सद्भाव का वातावरण कायम हो. एक लंबा जीवन उन्होंने बिताया और किस प्रकार से वे समाज को, देश को, दुनिया को संदेश देते गए. ये सौभाग्य है पाली जिले का, देशुरी तहसील का और निप्पल गांव का, जहाँ वो पैदा हुए. उन्होंने महान संत स्वामी दीपनाथ जी की सानिध्य में रह के संकल्प किया और वही संकल्प संदेश के रूप में आज सबके सामने है.
2: टुडे विद अस लार्ज नंबर ऑफ अवर फॉरेन फ्रेंड्स आर ऑल्सो हियर. आई वुड लाइक टू एक्नोलेज देयर डेडिकेशन टू दिस इंस्टीट्यूशन. आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल फार्मर्स हियर दैट लुकिंग टू योर डिवोशन it's really appreciable and it is amazing. It is beyond our thought and thinking.
3: तो बाबूजी मन से यहाँ हैं, तन से वहाँ हैं. गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, नशा पत्ता छोड़ो, जाति पाति का भेदभाव छोड़ो, सर्वधर्म का सम्मान करो, जिससे कि विश्व शांति बनी रहे, प्राणी मात्र की रक्षा हो और मानव का भी कल्याण हो. बोल श्री दीप नारायण भगवान की. धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव की.
0: Today, our stay in India has come to an end. The heart of India is an ashram. An ashram is the home of the soul, and the soul of that home is a Gurudev. His word comes from an eternity and lasts for an eternity.
4: God is endless, and His glory is endless. He is beyond our imagination, beyond the borders, and beyond everything.

0: अम्बले श्री देव प्रेम भगवान की जय श्री देवेश्वर महादेव की जय श्री स्वामी माधवानंद भगवान की जय
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय श्री पारहंस

0: ॐ श्री दीपनारायण
1: भगवान की जय।
0: श्री अलकापुरी महादेव
1: की जय।
0: श्री देवापुरी महादेव की जय। श्री माधवानंद जी भगवान की जय। श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव जी की जय।

ओम श्री दीपनारायण भगवान की जय श्री अलक पुरुष महादेव की जय श्री देव पुरुष महादेव की जय श्री माधवानंद जी भगवान की जय श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव जी।

0: ओम श्री दीपनारायण भगवान
1: की जय।
0: श्याला पुरुषा महादेव
1: की जय।
0: श्री देवा पुरुषा महादेव
1: की जय।
0: श्री माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
0: श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी सत गुरुदेव जी की जय। ओम श्री अलका पुरी जी सदा पिता परम्परा की जय।

प्रदीप नारायण भगवान का जय, गुरु नानक जी महाराजा की जय, प्रदीप नारायण भगवान की जय।

तस्मै शिखराय नमः शिवाय। ॐ मनरिति भस्म जलमिति भस्म है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धरनाशकाय कंठ में भी कर दो गले में हिया शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय मेष धरनाशकाय हरि ओम पिनाकहस्ताय सूर्याय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय ओम यक्षस्वरूपाय जटाधरकाय पिनाकहस्ताय सनातनाय ओम दिवाय देवाय दिगंबराय तस्मै हकराय नमः शिवाय। ओम जलमिति भस्म अग्निरिति भस्म हरि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थम गतो विवा अदसाय यस्मृत पुण्डरी काक्षम शवाह्याभ्यंतर शुचि यस्मृत पुण्डरी काक्षम शवाह्याभ्यंतर शुचि ज्यादा हो गए कुछ समझ गया।

0: अच्छा
1: तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय विद्महे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम भस्मांगराय नीलकंठाय महेश्वराय सदाशिवाय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। गुड गुड पिनाकास्ताय जटाधराय गुड ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुविजिताय। ए प्राणा प्रतिष्ठन्तु असे प्राणा क्षरन्तु च असे देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चनः। हरिः ओम गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम जलस्नानं करिष्यामि श्रीगं गणाधिपतये नमः। हरि ओम लिंगास्थानम करिष्यामि। ओम श्रीनारायण गंगे जैमिने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिक्रियताम्। हरि ओम तीन बार अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चायै माम हेतु च कश्चन इति जलस्नानम करिष्यामि इति जलस्नानम करिष्यामि। ओम नमः।

0: पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटाहराय देवाय दिगाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय देवाय दिव्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
1: तो चावल और चावल भी लगाइए, सब लौंग इलायची वस्त्र जनेऊ।
0: ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नानाः रत्नानि सुगंधिनी फलानि च मया दत्तानि लेपार्थं पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुगीफलं मया दत्तं नागवल्लीर्दलयुक्तं एलाचूर्णादि संयुक्तं नागवल्लीर्चूर्णा संयुक्तं समर्पयामि।
1: क्वाइंट्स ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसु अनंत पुण्यम फलम दद शांतिम प्रेक्ष्यमे दक्षिणाम समर्पयामि साम मसला शिवाय नमो नमः। वस्त्रम
0: ओम लोकलज्जा निवारणे मया पिपादिते लख्य वस्त्रम समर्पयामि श्री नारायण साम सदा शिवाय नमः।
1: बस अब धतूर धतूर की जगह में इसी को हम करें, इसको धतूर को स्मरण करके।
0: हरि ओम धतूर सहित पुष्पादि समर्पयामि
1: कान्नात कान्नात प्ररोहन्ति एवान दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन ये दुर्वाम समर्पयामि।
0: त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम त्रिजनम
1: ग्यारह टाइम चढ़ाइए
0: त्रिजन्मम त्रिगुणाकारम सत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सत्रियायुधम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम।
1: एवरीवन कैन पुट दिस वेरी गुड टुडे इफ समबडी
0: हरि ही ओम
1: क्या हो गए 11 टाइम्स। अच्छा
0: ओम माल्यादिनी सुगंधिनी
1: तिलक लगाइए सारे भगवान को तो पचाए। Can you pass that thali to Swamiji?
0: Gajananam bhutaganadi sevitam kapitta jambu phala charu bhakshanam umasutam sokavi

नाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गमगणाधिपतये नमः। श्रीखन्नम चंदनम दिव्यम गंधार्यम सुमनोहरम बिलपेनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम श्रीगम गणाधिपतये नमो नमः। सिंदूर भी लगा दीजिए। सिंदूरम शोभनम चैव कामदम प्रतिगृहताम सिंदूरम शोभनम चैव सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम अक्षताश्च कुंकुमाक्ता शुभ्रा घुनाश्च निर्मला मया पपादिते देवतुभ्यं वासदि प्रतिगृहताम। थोड़ा सा लाल व्हाइट में लाल बहुत अच्छा एक बिंद लगे थी बहुत। हरि ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम चंदनंतु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। हरि ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। समवन कैन प्ले द बेल। ओम सांब सदा शिवाय नमः। ना अगरबत्ती

0: अच्छा,
1: शंकर भगवान
0: जय अगरबत्ती। वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। इसको one leaf here and water. वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। some water. हरि ओम। कर्पूर गौरम कर
1: वाटर।
0: ओम ज्योतिर ज्योतिर अग्निर ज्योति स्वाहा। ओम ज्योतिर सूर्य वर्चर सूर्य स्वाहा। ओम अग्निर ज्योतिर वर्चर ज्योति स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्घिमन गुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिः ओम। ओम श्री परमेश्वराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री सदा शिवाय नमः।
1: More water.
0: ओम प्राच्यै नमः। सिंदूर भी डालिए। ओम पश्चिमाय नमः। ओम उत्तराय नमः। उत्तर दिशे नमः। ओम दक्षिणाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम आग्नेय नमः। ओम वायव्ये नमः। ओम नैऋत्ये नमः। शानाय नमः। ओम भूतलाय नमः। नीचे ओम आकाशाय नमः। आकाश में बस अब फूल रख देंगे चारों दिशा में। नाउ फ्लावर, वी नीड टू हैव फ्लावर।
1: ब्रिंग मी 9 कलर्स फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन।
0: या दैट इज ऑलरेडी। हरि ओम। ओम सूर्याय नमः। ओम सोम सेता वाइट। ओम चंद्राय नमः। ओम भौमाय लाल रेड। ओम भौमाय नमः। भौमरेण भौमाय नमः। नाउ ग्रीन। बुम बुदाय नमः। ओम बुम्बुदाय नमः। ओ येलो। ओ ब्रिम्रेस्पतये नमः। नाउ व्हाइट डायमंड कलर। ओम राम ब्रिम रौ शुक्राय नमः। नाउ ब्लैक सनी कलर।
1: थैंक यू।
0: ओम शमशनेश्वराय नमः। शमशनेश्वराय नमः। नाउ ब्लू। ओ ये या या। ओम राम राहवे नमः। ब्राउन
1: ब्राउन यस।
0: Oh, maybe that one, like pinky style. Yeah. Yeah, you got it? Okay. Yeah.
1: Where is the vokai? Where is the...
0: Basma?
1: Basma.
0: There is a small katori. Where is that basma? Bas. Om kem ke dave namaha. Bas. Bas. Agni ko... प्रज्वलित करके एक लकड़ी में रख के छोड़ देंगे उसमें। ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षिण सूर्य अजायत श्रोता अद्वायु ब्राण समग्नि अजायत। ओम अग्नि सानिल्य गोत्र ओम अग्नि सानिल्य गोत्र मेष ध्वज प्रामुखे मम सम्मुखो भवः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षिण सूर्य अजायत श्रोता अद्वायु ब्राण समग्नि अजायत। बोलिए अग्नि देवता की जय। नाउ वी कैन सेट थ्री लकड़ी विथ घी थ्री स्टिक्स थ्री ओनली फर्स्ट थ्री
1: ऑल दिस थ्री वंस
0: नो नो डिफरेंट सेपरेट या ओके।

0: ओम धन्वंतरवे स्वाहा। नाउ वेयर इज दैट लॉन्ग स्टिक फॉर द घी? ओ हाँ, ये घी के लिए। श्योर। ओम प्रजापते स्वाहा। Put in your chest and when he says स्वाहा। ओके, जिसको जिसको भस्म लगाना बचा है उनको भी लगा दीजिए। ओ जो पीछे आए,
1: रतन देवी और सूरज देवी, those who just came now, put them till the gods from this here. And where is this थाली?

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यं नमः स्वाहा। शची पुरंदराभ्यं नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः।

0: ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, सर्वार्थ देवा सर्वतीर्थादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सोधा नमस्तुते स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा, ओम ब्रह्मपुत्रिये विद्महे सरस्वतीये धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा, ओम महालक्ष्मीये विद्महे विष्णुपत्नीये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा, दिवाकराय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा, ओम दश दिक्पालाय नमः स्वाहा, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम् नमः, नमः प्रकृते भद्राय देवता देवाय स्मता प्रतिष्ठाम स्वाहा, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कस्सन सशत्त शोक सुभद्रिकां काम्बिलवासिनीं स्वाहा, एहे ई ब्रह्मन्द महादेवाय नमः स्वाहा, हरि ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा, पशुपत्ये नमः स्वाहा, अघोराय नमः स्वाहा, साम सदाशिवाय नमः स्वाहा, चारवेदाय नमः स्वाहा, ऋग्वेदाय नमः स्वाहा, सामवेदाय नमः स्वाहा, यजुर्वेदाय नमः स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः स्वाहा, अठारपुराणाय नमः स्वाहा, सकल उपनिषदाय नमः स्वाहा, बद्रीनाथाय नमः स्वाहा, केदारनाथाय नमः स्वाहा, ठाकुरपुरे नमः स्वाहा, सोमनाथाय नमः स्वाहा, अमरनाथाय नमः स्वाहा, नाउ वी गोइंग थाउजेंड्स
1: थाउजेंड नेम्स ऑफ द शिव,
0: ओम स्थिराय नमः स्वाहा, ओम

ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम प्रभवाय नमः स्वाहा ओम प्रवराय नमः स्वाहा ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम सर्वात्मने नमः स्वाहा ओम सर्वविख्याताय नमः।

0: स्मगोत्ने नमः स्वाहा भसमभूताय नमः स्वाहा ओम तरवे नमः स्वाहा ओम गणाय नमः स्वाहा लोकपालाय नमः स्वाहा आलोकाय नमः स्वाहा ओमात्मने नमः स्वाहा ओम सर्वभूजिताय नमः स्वाहा ओम शुक्लाय नमः स्वाहा त्रिशुकाय नमः स्वाहा संपन्नाय नमः स्वाहा अशुचाय नमः स्वाहा भूत निविष्टाय नमः स्वाहा ओम आश्रमासाय नमः स्वाहा क्रियावस्थाय नमः स्वाहा विश्वकर्मपतये नमः ओम ओम बराय नमः स्वाहा ओम विशाल शाखाय नमः स्वाहा ओम प्रतिष्ठाय नमः स्वाहा इट्स हाफ हाफ ऑफ द वे नाउ
1: ओके आई थिंक वी विल नीड राइस मोर
0: हरि ओम ओम अम्बुजालाय नमः स्वाहा सुनिश्चलाय नमः स्वाहा कपिलाय नमः स्वाहा कपिशाय नमः स्वाहा शुक्लाय नमः स्वाहा आयुषे नमः स्वाहा ओम अपराय नमः स्वाहा ओम पराय नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा ओम आदित्ये नमः स्वाहा तक्षरताय नमः स्वाहा सुविज्ञेयाय नमः स्वाहा सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम अनुकारणे नमः स्वाहा सुबान्धवाय नमः स्वाहा तुम्बणिदाय नमः स्वाहा महाक्रोधाय नमः स्वाहा ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा जलेशयाय नमः स्वाहा उग्नाय नमः वसंकराय नमः स्वाहा ओम वंशाय नमः स्वाहा वंशनादानाय नमः स्वाहा अविन्दाय नमः स्वाहा अनिन्दिताय नमः स्वाहा सर्वांगरूपाय नमः स्वाहा मायाविने नमः स्वाहा ओम सुहृदाय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनलघाय नमः स्वाहा बन्धनाय नमः स्वाहा बन्धकर्ते नमः स्वाहा सुबन्धमीजाय नमः स्वाहा सहसारगे नमः स्वाहा सहज्ञानरथे नमः स्वाहा सकारमानाय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा मायायुधाय नमः स्वाहा बहुधानिन्त्याय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा ओम शंकराय नमः स्वाहा ओम अगनाय नमः स्वाहा ओम अमरेशाय नमः स्वाहा ओम महादेवाय नमः स्वाहा ओम विश्वदेवाय नमः स्वाहा ओम सुराग्रिणी नमः स्वाहा अहिर्भुद्याय नमः स्वाहा अनिलाभाय नमः स्वाहा शेखितानाय नमः स्वाहा हविषे नमः ओम अजय पातके नमः स्वाहा अजय कपाते नमः स्वाहा ओम कापिले नमः स्वाहा त्रिशंके नमः स्वाहा अजिताय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम धनंतरे नमः स्वाहा ओम धूमकेतवे नमः स्वाहा ओम स्कंदगाय नमः स्वाहा वैष्णवाय नमः स्वाहा ओम धात्रे नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम मित्राय नमः स्वाहा ओम त्वष्ट्रे नमः स्वाहा ओम ग्रीवाय नमः स्वाहा ओम धराय नमः स्वाहा ओम प्रभवाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय वाय नमः स्वाहा सर्वगाय वायवे नमः स्वाहा अर्थमे नमः स्वाहा सवित्रे नमः स्वाहा ओम रवये नमः स्वाहा ओम संगे नमः स्वाहा विधात्रे नमः स्वाहा ओम मान्धात्रे नमः स्वाहा भूतभावनाय नमः स्वाहा ओम विभवे नमः स्वाहा ओम बणविवायिने नमः स्वाहा ओम सर्वकामगुणाय नमः स्वाहा सर्वकामगुणवहाय नमः स्वाहा पद्मनाभाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा चन्द्रवस्त्राय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाहा बलवते नमः स्वाहा उपशान्ताय नमः स्वाहा पुराणाय नमः स्वाहा पुण्यसञ्चने नमः स्वाहा ओम ए नाम स्वाहा कुरुकर्त्रे नमः स्वाहा ओम कुरुवासिने नमः स्वाहा कुरुभूताय नमः स्वाहा ओम गुणदोषाय नमः स्वाहा ओम सर्वासाय नमः स्वाहा धर्मचारिणी नमः स्वाहा सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः स्वाहा ओम देवादेवाय नमः सुमुख शक्ताय नमः स्वाहा ओम सते नमः स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम सर्वरत्नवियेद नमः स्वाहा ओम कैलासगिरिवासिने नमः स्वाहा हिम विद्नी संस्थाय नमः स्वाहा हिम बद्दी संस्त्रसाय नमः स्वाहा ओम कुलहारिणी नमः स्वाहा ओम कुलकत्रे नमः स्वाहा ओम भवविद्याय नमः स्वाहा ओम बरुप्रदाय नमः स्वाहा ओम वाणिज्याय नमः स्वाहा ओम वरदकिने नमः स्वाहा ओम वृक्षाय नमः स्वाहा ओम वकिलाय नमः स्वाहा।

0: ओम चंदनाय नमः, स्वाहा ओम छदाय नमः, स्वाहा ओम अलोलाय नमः, स्वाहा ओम सारग्रीवाय नमः, स्वाहा ओम महाजत्रे नमः, स्वाहा ओम अलोचाय नमः, स्वाहा महासौदाय नमः, स्वाहा सिद्धकारिणी नमः, स्वाहा ओम छदाय नमः, स्वाहा ओम चंदनाय नमः, स्वाहा ओम वृक्षाय नमः, स्वाहा वरदगिने नमः, स्वाहा वाणिजाय नमः, स्वाहा वकीलाय नमः, स्वाहा बहुप्रदाय नमः, स्वाहा बहुविद्याय नमः, स्वाहा सिद्धार्थकारिणी नमः, स्वाहा सिद्धार्थ छंदो व्याकरणोत्तराय नमः, स्वाहा सिंहनादनाय नमः, स्वाहा सिंह धर्मराष्ट्राय नमः, स्वाहा सिंहगाय नमः, स्वाहा सिंहवाहनाय नमः, स्वाहा प्रभात्मने नमः, स्वाहा जगत्कालस्थनाय नमः, स्वाहा लोकहिताय नमः, स्वाहा अमतरवे नमः, स्वाहा सारंजाय नमः, स्वाहा नवसक्रांगाय नमः, स्वाहा केतुमालिनी नमः, स्वाहा सवानाय नमः, स्वाहा भूतालयाय नमः, स्वाहा भूतपतये नमः, स्वाहा अहोरात्राय नमः, स्वाहा अग्निदिताय नमः, स्वाहा सर्वभूतानां बाह्यत्रि नमः, स्वाहा अवनीलाय नमः, स्वाहा अभिभवे नमः, स्वाहा भवानाय नमः, स्वाहा अमोघाय नमः, स्वाहा संगताय नमः, स्वाहा अश्वाय नमः, स्वाहा भोजनाय नमः, स्वाहा प्राणधाराय नमः, स्वाहा घृतमिदे नमः, स्वाहा अमिताय नमः, स्वाहा दक्षाय नमः, स्वाहा सत्कृताय नमः, स्वाहा युगधापिताय नमः, स्वाहा गोपालाय नमः, स्वाहा गोपतये नमः, ओम ग्रामाय नमः, स्वाहा गोमवर्चनाय नमः, स्वाहा ओम हरये नमः, स्वाहा ओम हिरण्यवाय नमः, स्वाहा प्रवेशिनाय नमः, स्वाहा गुहालपालाय नमः, स्वाहा प्रकिष्टारे नमः, स्वाहा महर्षाय नमः, स्वाहा जितकामाय नमः, स्वाहा जितेन्द्राय नमः, स्वाहा ओम गंधधराय नमः, स्वाहा उपसदाय नमः, स्वाहा 720
1: लिफ्ट
0: या नो नो वी क्रॉस्ड तपस्य शक्ताय नमः, स्वाहा ओम रतये नमः, स्वाहा ओम नराय नमः, स्वाहा महागीताय नमः, स्वाहा मायानित्याय नमः, स्वाहा अप्सरो गण वेत्ये शिवाय नमः, स्वाहा महाकेतवे नमः, स्वाहा महाधातवे नमः, स्वाहा नेनक्यसुनचार्ये नमः, स्वाहा नेकसानुचराय नमः, स्वाहा ओम चलाय नमः, स्वाहा ओम आवेदनीयाय नमः, स्वाहा आदेशयाय नमः, स्वाहा सगंध सुखावहाय नमः, स्वाहा तोरणाय नमः, स्वाहा ओम तारणाय नमः, स्वाहा ओम बाताय नमः, स्वाहा परिधने नमः, स्वाहा परिखेचराय नमः, स्वाहा संयोगार्थ वर्धनाय नमः, स्वाहा संयोगाय वर्धनाय नमः, स्वाहा ओम वृद्धाय नमः, स्वाहा अतिवृद्धाय नमः, स्वाहा ओम अतिविद्याय नमः, स्वाहा ओम गुणाधिकाय नमः, स्वाहा ओम नित्यामात्म सहाय नमः, स्वाहा देवासुरपतये नमः, स्वाहा ओम पतये नमः, स्वाहा ओम युक्ताय नमः, स्वाहा ओम युक्तभावे नमः, स्वाहा देवी सुपर्णे नमः, स्वाहा असडाय नमः, स्वाहा ओम सुपसाय नमः, स्वाहा ओम ध्रुवाय नमः, स्वाहा ओम हरिणाय नमः, स्वाहा ओम हराय नमः, स्वाहा आवर्तमाने भीवसे नमः, स्वाहा ओम वसुश्रेष्ठाय नमः, स्वाहा महापथाय नमः, स्वाहा ओम शिरोमणि नमः, स्वाहा सर्वलक्षण सिद्धाय नमः, स्वाहा अक्षाय रथ योगिने नमः, स्वाहा ओम सर्वयोगिने नमः, स्वाहा महाबलाय नमः, स्वाहा सामग्नाय नमः, स्वाहा ओ अस्मायानाय नमः, स्वाहा तीर्थदेवाय नमः, स्वाहा महारथाय नमः, स्वाहा निर्विजयाय नमः, स्वाहा ओम जीवनाय नमः, स्वाहा ओम मंत्राय नमः, स्वाहा ओम मंचाय नमः, स्वाहा ओम शुभाक्षाय नमः, स्वाहा बहुकर्णनाय नमः, स्वाहा ओम रत्नभूताय नमः, रत्नंगाय नमः, स्वाहा महाबनी पाणिदेयाय नमः, स्वाहा महार्णबणी पानविदे नमः, स्वाहा ओम मूलाय नमः, स्वाहा ओम विशलाय नमः, स्वाहा ओम अमृताय नमः, स्वाहा ओम व्यक्त्याय नमः, स्वाहा ओम तपोनिधे नमः, स्वाहा ओम आरोहराय नमः, स्वाहा आधिरोहाय नमः, स्वाहा शीलधारिणे नमः, स्वाहा ओम महायसने नमः, स्वाहा ओम सेनाकल्पाय नमः, स्वाहा ओम महाकल्पाय नमः, स्वाहा ओम योगाय नमः, स्वाहा ओम योगकराय नमः, स्वाहा ओम हरये नमः, स्वाहा ओम युगरूपाय नमः, स्वाहा ओम महारूपाय नमः, ओम स्वाहा ओम महानगनाय नमः, स्वाहा ओम महानागनाहाय नमः, स्वाहा ओम बधाय नमः, ओम स्वाहा महानागगणाय नमः, स्वाहा ओम न्याय निर्वाणाय नमः, स्वाहा ओम मातपदाय नमः, स्वाहा ओम पादाय नमः, स्वाहा ओम पंडिताय नमः, स्वाहा ओम अचलोपदाय नमः, स्वाहा बहुमालाय नमः, स्वाहा महामालाय नमः, स्वाहा शशिनी हरस्व

सुलोचनाय नमः स्वाहा ओम विस्ताराय लवणाय कृपाय नमः स्वाहा ओम त्रियुगाय नमः स्वाहा ओम सफल दयाय नमः स्वाहा अप्रतिलोचनाय नमः स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा मणिसिद्धाय नमः स्वाहा ओम जटाधराय नमः स्वाहा ओम बिंदवे नमः स्वाहा ओम विसर्गाय नमः स्वाहा सुमुखाय नमः स्वाहा ओम सराय नमः स्वाहा ओम सारुभूताय नमः स्वाहा ओम सर्वायुधाय नमः स्वाहा ओम सहायाय नमः स्वाहा निवेदनाय नमः स्वाहा सुखा जाताय नमः स्वाहा सुगंधाराय नमः स्वाहा महाधनुषे नमः स्वाहा गंधपालिने नमः स्वाहा ओम शंकाय नमः स्वाहा उत्थनाय नमः स्वाहा ओम मंथनाय बाहुबलये नमः स्वाहा मंधाननाय बहुल बावे नमः स्वाहा ओम सकलाय नमः स्वाहा सर्वलोचनाय नमः स्वाहा तलस्थालाय नमः स्वाहा करस्थालिने नमः स्वाहा ऊर्ध्वसमह नाननाय नमः स्वाहा ओम महते नमः स्वाहा ओम छत्राय नमः स्वाहा सुछत्राय नमः स्वाहा वीरव्यातलकाय नमः स्वाहा सर्वाक्षताय क्रमाय नमः स्वाहा ओम मुन्नाय नमः स्वाहा ओम विरूपाय नमः स्वाहा ओम विकृताय नमः स्वाहा ओम दंडिने नमः स्वाहा ओम कुन्निने नमः स्वाहा विकृणवणाय नमः स्वाहा अरिहेच्छाय नमः ओम कुंभाय नमः स्वाहा ओम ककुभाय नमः स्वाहा ओम वज्रिणे नमः स्वाहा ओम शतविजाय नमः स्वाहा सहस्रपादे नमः स्वाहा सहस्र सुभद्रे नमः स्वाहा ओम देवेन्द्रराय सर्वदेव मापाय नमः स्वाहा ओम गुरवे नमः स्वाहा ओम सहस्रभावे नमः स्वाहा ओम सर्वांगाय नमः स्वाहा ओम शरण्याय नमः स्वाहा ओम सर्वलोककृते नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा त्रिककुळे मात्राय नमः स्वाहा कनिष्ठाय नमः स्वाहा कृष्णपिंगलाय नमः स्वाहा ब्रह्मदंड विनिर्माताय नमः स्वाहा शतग्नि वास शक्तिमे नमः स्वाहा पद्मगर्भाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा ब्रह्मगर्भाय नमः स्वाहा ओम जलोद्भवाय नमः स्वाहा गवस्ते नमः स्वाहा ब्रह्मकृते नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ब्रह्मविदे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणाय नमः स्वाहा ओम गतये नमः स्वाहा अनंत रूपाय नमः स्वाहा ओम नैकात्मने नमः स्वाहा ओ स्वयंभू तिग्म तेजसे नमः स्वाहा ऊर्ध्वगामद्मे नमः स्वाहा उपस्पदे नमः स्वाहा बातहराय नमः स्वाहा मनोजवाय नमः स्वाहा चंदनीये नमः स्वाहा चंदनीने नमः स्वाहा पद्मनालग्राय नमः स्वाहा सुरम्य भूतरणाय नमः स्वाहा ओम नराय नमः स्वाहा कणिकार महास्रग्विणे नमः स्वाहा ओम नीलमौलये नमः स्वाहा ओ पिनाकधृते नमः स्वाहा उमापतये नमः स्वाहा उमाकांताय नमः स्वाहा जाह्वविभृते नमः स्वाहा उमाधवाय नमः स्वाहा ओम बाराय बाराय नमः स्वाहा ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम वरेण्याय नमः स्वाहा ओम सुमहास्वाय नमः स्वाहा महाप्रसादाय नमः स्वाहा दमनाय नमः स्वाहा शत्रुघ्ने नमः स्वाहा श्वेतपिंगलाय नमः स्वाहा प्रीतात्मने नमः स्वाहा परमात्मने नमः स्वाहा प्रयात्मने नमः स्वाहा प्रधानधृते नमः स्वाहा सर्वपार्श्वमुखाय नमः स्वाहा ओम त्रास्ख्याय नमः स्वाहा धर्मसाधने नमः ओम धर्मसाधारणोपराय जन्मः स्वाहा चराचरात्मे नमः स्वाहा सूक्ष्मात्मने नमः स्वाहा अमृताय गोगविशेश्वराय नमः स्वाहा शारदस्याय नमः स्वाहा ओम वसुरादित्याय नमः स्वाहा विश्वदवस्य नमः स्वाहा विश्वते सवितामृताय नमः स्वाहा ओम व्यासाय नमः स्वाहा ओम स्वर्गाय शृंगोपाय विस्ताराय नमः स्वाहा पर्यायोनराय नमः स्वाहा ओम ऋतये नमः स्वाहा ओम संवत्सराय नमः स्वाहा ओम मासाय नमः स्वाहा ओम पाक्ष्याय नमः स्वाहा ओम शंका समनाय नमः स्वाहा ओम कलाभ्यो नमः स्वाहा काष्ठाभ्यो नमः स्वाहा लवेभ्यो नमः स्वाहा मातृभ्यो नमः स्वाहा मुहूर्ताभ्य क्षेपाश्यो नमः स्वाहा ओम वणशिभ्यो नमः स्वाहा क्षणभ्यो नमः स्वाहा विषम क्षेत्राय नमः स्वाहा 920 ओम विश्व क्षेत्राय नमः स्वाहा प्रजा विजाय नमः स्वाहा ओम लिंगाय नमः स्वाहा आद्याय निर्गमाय नमः स्वाहा ओम सते नमः स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम व्यक्ताय नमः स्वाहा ओम अव्यक्ताय नमः स्वाहा पित्रे नमः स्वाहा मात्रे नमः स्वाहा ओम पितामहाय नमः स्वाहा स्वर्गद्वाराय नमः स्वाहा प्रजाद्वाराय नमः स्वाहा मोक्षद्वाराय नमः स्वाहा त्रिविष्टापाय नमः स्वाहा निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम राधनाय नमः
स्वाहा ओम ब्रह्मलोकाय नमः स्वाहा ओम पराय गते नमः स्वाहा ओम देवासुर विनिमात्रे नमः स्वाहा देवासुर परायणाय नमः स्वाहा ओम देवासुर गुरुवे नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा देवासुर नमस्कृताय नमः स्वाहा देवासुर महामात्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाक्षत्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाध्यक्षाय नमः स्वाहा देवासुर गणैघृत्ये नमः स्वाहा देवी देवताय नमः स्वाहा देवादि देवताय नमः स्वाहा देवर्षये नमः स्वाहा देवासुर वरप्रदाय नमः स्वाहा देवासुरेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वाय नमः स्वाहा देवासुर महेश्वराय नमः ओम सर्वदेवी मयाय नमः स्वाहा अंजिन्याय नमः स्वाहा देवतात्मने नमः स्वाहा आत्मसमवाय नमः स्वाहा उद्यमे नमः स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा ओम वेदाय नमः स्वाहा विरजाय नमः स्वाहा नीरजाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा इडाय नमः स्वाहा ओम हस्तीश्वराय नमः स्वाहा बेग्राय नमः स्वाहा देवसीमाय नमः स्वाहा नरऋषभाय नमः स्वाहा विबुधाय नमः स्वाहा अग्नबराय नमः स्वाहा ओम सूक्ष्माय नमः स्वाहा सर्वदेवाय नमः स्वाहा तपोमाय नमः स्वाहा ओम सुक्ताय नमः स्वाहा सुयुक्ताय नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा अभिवाय नमः स्वाहा जी ओम शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा ओम निसर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम गृहाय नमः स्वाहा अव्याय नमः स्वाहा प्रासान्य प्रवाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा ओम कांताय नमः ओम निजाय सर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंग प्रियाय नमः स्वाहा प्रभुजे नमः स्वाहा राज राजाय नमः स्वाहा निराजायाय नमः स्वाहा अभिराय नमः स्वाहा अभिरामाय नमः स्वाहा सुरगणाय नमः स्वाहा अभिरामाय नमः स्वाहा सर्वसाधनाय नमः स्वाहा ललाटाक्षराय नमः स्वाहा विश्वदेवाय नमः स्वाहा हरिणाय नमः स्वाहा ब्रह्मवर्चसामाय नमः स्वाहा स्थावरणाम नमः स्वाहा स्थानपतये नमः स्वाहा स्थावरणाम पतये नमः स्वाहा नियमेन्द्रिय वर्धनाय नमः स्वाहा सिद्धार्थाय नमः स्वाहा सिद्धभूतार्थाय नमः स्वाहा अंचित्याय नमः स्वाहा सत्यव्रताय नमः स्वाहा ओम सुचये नमः स्वाहा व्रताधिपाय नमः स्वाहा ओम परस्परे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम भक्तानां पर्याये गतवे नमः स्वाहा ओम विमुक्ताय नमः स्वाहा ओम मुक्ततेशसे नमः स्वाहा ओम श्रीमते नमः स्वाहा श्रीवर्धनाय नमः स्वाहा ओम जगतपतये नमः स्वाहा इति शिव सहस्त्र नामावली शिवार्पणम् स्वाहा हर हर महादेव शिव जी के 11 1008 तो शिव जी को करके फिर करते हैं बचा है बचा वेट वेट हां तो 11 टाइम्स वी एवरीवन चैंट ओम नमः शिवाय स्वाहा टुगेदर ओके ओम नमः

0: Now we everyone stand up, and this is the final sacrifice and havan. Oh. ये पूरा है, ये तो यही है, यही है। नहीं, यही ठीक है, इसी को धारण लगाता हूँ। हरि ही ओम।
1: ठहरो ठहरो,
0: उधर उधर
1: की
0: ये यहाँ पे तुम बचा हुआ गिरा दीजिए। Whatever left over, we going to offer now. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudakshyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Sarvavai Purnaha Swaha Sarvavai Purnaha Swaha Sarvavai Purnaha Swaha ओम वसो पवित्रमसी वसु पवित्रेण सहस्रधारेण देवस्त्वा पुनातु सविता वसो। ओम शांति शांति शांति। फिर ये हाथ में लगाइए। हरि ही ओम। दो हाथ में लगा के अग्नि में दिखा के ओम बलमसि बलमहि देहि मन्युमसि मन्युमहि देहि सहोसि सहोमहि देहि तेजोसि तेजोमहि देहि वीर्यमसि वीर्यमहि देहि ओजोसि ओजोमहि देहि मन्युमसि मन्युमहि देहि। ओम शांति शांति शांति। द फाइनल पीस प्रेयर। ओम देव शांति रंतरिक्ष गो शांति हस्ते शांति रापा शांति रो सधाया।

0: ॐ असतो मा सद्गमया तमसो मा मृत्युर्मा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णुपाददकं भित्वा पुनर्जन्म न विद्यते चन्दनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जय बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जय। सांब सदा शिव जी को जय। बोलिए प्यार से गणपति भगवान को जय। पशुपति नाथ को जय। सदा शिव को जय। चारो वेद को जय। महालक्ष्मी महासरस्वती को जय। चारो वेद को जय। सत्य सनातन धर्म को जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद स्वामी जी को जय। हरि ओम।
1: पंडित जी धन्यवाद।
0: हरि ओम। थैंक यू वेरी मच।
1: एवरीवन डू योरसेल्फ, टेक योर फिंगर एंड लाइक दिस एंड मेक तिलक। ओके दे शुड डिप देयर
0: सम। वी पुट लिटिल घी।

परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वदिशाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम। अलकपुरी जी महादेव की, देवाजी देव शिव स्वरूप देवपुरी जी महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, आराध्य सतगुरुदेव हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की, सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की जय। आराध्य गुरुदेव के सभी परम भक्त धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। गुरु पूनम का पर्व, आप सभी को ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की ओर से आशीर्वाद, ब्लेसेड सेल्फ, स्पिरिचुअल सीकर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, टुडे ऑन दिस होली ओकेशन ऑफ श्री गुरु पूर्णिमा, ब्लेसिंग इज कमिंग फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा, होली लैंड भारत। वेलकम ऑल ऑफ यू हियर एंड दोज हु आर इन अदर कंट्रीज। द गुरु पूर्णिमा हैज मैनी मीनिंग्स। फर्स्ट व्हाट उपनिषद एंड वेद सेज, तमसो मा ज्योतिर्गमय, लीड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट, अज्ञान से ज्ञान की तरफ। आराध्य गुरुदेव श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान कहते थे

ज्ञानहीना पशु समाना, विदाउट नॉलेज वन इज लाइक ए एनिमल. नॉलेज इज द लाइट. And ignorance is the darkness. The light of the knowledge is not this physical light which we see with our physical eyes, but it is the light which is within ourself in each and every entity. But out of 8.4 million different creatures, human have got a special body and got a powerful tool that's called intellect. But the intellect, buddhi jo hai, buddhi ko gyan, विद्या चाहिए. बुद्धि को जैसी शिक्षा जैसा ज्ञान दोगे वैसा ही व्यक्ति सोचेगा बनेगा. व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू विल गेट लाइक दैट यू विल बी एंड यू विल थिंक लाइक दैट. In the police training, the policeman goes, he gets the training for the police, how to act, how to behave, how to be. His thinking, his knowledge, a training makes him a police. A driver gets the knowledge how to drive and he becomes the driver. So the driver, similarly, चोर को भी ट्रेनिंग मिलती है तो वो चोर बनता है, आतंकवाद बनता है या और भी बनता है जैसी शिक्षा मिलती है. Therefore, the intellect needs a particular education. Second, the education for the humans is very important, and that is the spiritual and ethic principles, where one understands the value of the Sanatana. The Sanatana values makes the human a human. So this, the education is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master, and in Hindi we say guru. That's all. Jagda keval bhasa ka hai aur kuch bhi nahi. Aap Ramayan Gita padhoge, to Musliman shayad nahi samjhenge, swikar nahi karenge. और अगर वो कुरान में उर्दू पढ़ेंगे तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्यों आप नहीं समझ रहे हो. बात वही है. अच्छी बात रामायण भी कहती है, अच्छी बात कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है. डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज. इट्स ओनली वन. एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कोई है,
दूजा कहता है कि मारी मामी है, कोई है थारा मामा री बू है कोई, मारी माँ है मामी नहीं कहो, एक है मारी दादी है, एक है मारे माँ है, दूसरे कहता है मारी बेटी है, तीसरे कहता है मारी बहन है, और दूसरा कहता है मारी बुआ है, दूसरा कहता मारे काकी है, आंटी नहीं ये बेटा आजकल कह के आंटी, ये आंटी थारी बापरी आड़ी क्यों गंदी गंदी बात करो है, काका काकी माजी बाजी वो करो, लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है मारी पोती है वो महिला एक ही है कि नहीं, एक ही महिला है, नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया, दादी है माँ है बेटी है बहन है बुआ है काकी है पोती है, बट है वो एक ही। सिमिलरली गॉड इज वन विच गॉड हैज नो नेम एंड ऑल आर टॉकिंग अबाउट अ गॉड फॉर वननेस। सो दिस एजुकेशन द एथिक एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन वी गेट इन द गुरुकुल। गुरुकुल मीन्स स्कूल। अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाडन गुरुकुल में भर्ती करिया है, नहीं बाप जी हमारे गुरुकुल में नहीं जानो, हाँ हमारे स्कूल में जानो है, उन्होंने ठा तो है को नहीं, बाप जी हमारे टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ानी अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरों ने नौकरी नहीं लागे, नौकरी पड़ी खाडा रे माए। मनुष्य बनाओ बच्चे को, आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, न अंग्रेजी पढ़ी रहा रोता फिरे कौन झाड़ू लगावाने को नहीं रखे। इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है, तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा। संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार। आज तो बस नौकरी चाहिए पे अंग्रेजी बोलो, नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न केवल अंग्रेजी में भाषण दोगे, नहीं नहीं मैं हिंदी में बोलू बाप जी बोलो आदि कचरी है। हमें अंग्रेजी बोले मैंने कहा बेरस तो पूछ कर जानो कि स्टेट, अरे बाबा जी स्टेट जाओ, अरे की स्टेट में जाऊं, गुजरात में जाऊं कि राजस्थान में जाऊं कि मध्य प्रदेश में जाऊं, हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रहे स्टेट स्टेट आ थोड़ी अंग्रेजी, अरे पूरी सीखी नहीं। बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं तो वो टैगोर साहब को कह रहे मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी, वो 4 शब्द नहीं कियो, और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल गो है, तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी भूल गया, हमारी मातृभाषा है उसके द्वारा ही, उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी, कहा है कि बणियाणी रेसी नहीं रेसी सुधारी,
होनारी परिचय

જાવશે કે બાબી કુમારી હે કે બણિયાણી રહે નહી ને રેસી સુથારી આ હોનારી પરી જઈ કે બાબી કુમારી કોણ કહે રહી હે રાવણ કો રાવણ કી પત્ની કે રાવણ તું બના કરકે હટ કરકે સીતા કો લાયા વો નહીં રહેગી વો થાકી કો નહીં હે રેસી સુથારી થારી હે વોય રહેંગી હે હટ કર્યો તો હોનારી લંકા પરી જઈ કોણ કહેવે કુંભકર્ણ કી બાબી મંદોદરી કહે રહી હે તો ઇસલિયે થે ઉદાર લાયોડી ભાષા ને પણ ને પેટ ભરા મત કરો બુદ્ધિ જ્ઞાન ઉસમે જ્ઞાન ભરા હે સંસ્કૃત કે અંદર મે એની હાઉ સોરી દેટ આઈ હેવ ટુ સ્પીક બિટવીન ઇન હિન્દી એન્ડ સંસ્કૃત આઈ ડોન્ટ નો સો આઈ હેવ ટુ સ્પીક લિટલ બિટ ઇંગ્લિશ બીકોઝ ઓલ ઓફ યુ But I'm telling these Indians, they should learn their mother tongue. And then after they should learn English. They don't know English. And they forgot the Hindi. I asked someone address. I have very visited. The direction is going there. Oh, where is that place? So say state. State is not a path. Direction is straight. But wo straight to aata nahi hai. और महाराज जी वो क्या कहते योगा के अंदर हमें तो हम कहते हैं अच्छा भाई अरे भाई गाड़ी चलाओ कॉन्सेंट्रेशन करो तो वो कहे कौन सा स्टेशन अरे बाप जी कौन सा स्टेशन चल रहे हो नहीं लो कॉन्सेंट्रेशन ने कौन सा स्टेशन आधारी अंग्रेजी ने आधारी हिंदी सही बात है कि नहीं इसलिए दैट्स वाई गुरु पूर्णिमा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एडुकेशन सनातन वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ ह्यूमन क्वालिटीज ह्यूमन एबिलिटीज दिस इज अ गुरु पूर्णिमा एंड देन इज अ वर्शिप्ड ऑफ दैट Divine who gave you the knowledge. Then is the birthday of Bhagwan Ved Vyasa and every disciple adores, remembers to keep this living culture. So Guru Purnima is a festival of the culture to protect the culture. It's called a living culture. Sanatan Dharma is a living Dharma. Sanatan Dharma is a living Dharma. What does it mean? What means the living Dharma? One mother gives a birth to a child. It is the dharma of the mother to give birth to the child. It's her dharma, wo sanatan dharma. A one tree gives you fruit. It is the dharma of the fruit tree to give the fruit. Ek maa bachche ko janam deti hai, bachchi ko janam deti hai, wo unka dharma jo hai, wo sanatan dharma hai. Aur is युग के अंदर इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है कौन सा गुरु थारा मास्टर स्कूल में स्कूल के मास्टर आपके गुरु है इसलिए और सभी सिस्टम विल स्टॉप ब्लॉक बट The Sanatan Dharma Guru and Disciple will ever and ever will last. That's why it's called eternal religion of Sanatan. The relation of the mother, child, husband, wife, nature, etc., etc. Therefore, the Guru Purnima
has a great meanings than other any festivals. हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, वो एक ही जन्माष्टमी मन रही है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरबों महर्षि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी वही, इसीलिए दैट इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल, दैट्स कॉल्ड लिविंग फेस्टिवल. गुरु पूर्णिमा इज लिविंग फेस्टिवल, जिंदा. और सब संप्रदाय चली जाएगी लेकिन ये सनातन संस्कृति कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि ये शिष्य और गुरु का नाता है. आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद. आप आए, यू केम ऑल, वेलकम. नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, देन आफ्टर विल बी भजन, एंड भजन के बाद में आनंद, और आनंद के बाद में जागृत. तो जागृत, सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा. कोई तो करेगा ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ है. तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यही पे होना के बाबूजी कमरों के कमरा तो गणे जा हुई जा, कमरा की कोई कमी नहीं है, हमें तो कमरा खूब है. माँ कोई नाग देवता बैठा वे तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है, जो ध्यान राख जो भाई सरप अरप आ जाता है, इसलिए इधर उधर जाते हो. और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर, ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना. अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा. कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठो तो. इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है. भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना. सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गांधी की, और उसके बाद में यहां से भी सज्जन आएंगे दर्शन करेंगे, तो कार्यक्रम चलता रहेगा. अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग. विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड. इफ यू वांट टू लिसन द भजन्स देन इट विल बी webcast and bhajans whenever you like. You can put on your television and you can see or hear the bhajan. Bol Sanatan Dharma ki jai, Satguru Dev ki jai.

भगवत ओम शांति शांति शांति। श्री दीप नारायण भगवान देवादिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म की ओम शांति।

जय। देवाधिदेव श्री देवापुरी जी महादेवा की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट श्री परहंस श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। सबक मंडल की जय। Okay, one more. One. Satya Guru Rakhwaj.

हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।

0: हरि
1: मृत्युंजय वृषभध्वज शूलेन
0: मृत्युंजय वृषभध्वज शूलेन
1: गंगाधर मृद मदनारे
0: गंगाधर मृद मदनारे
1: हर शिव शंकर गौरीशम
0: हर शिव शंकर गौरीशम
1: वंदे गंगाधर मीशम
0: वंदे गंगाधर मीशम
1: शिवरुद्रम पशुपतिमीशानाम
0: शिवरुद्रम पशुपतिमीशानम
1: कलये काशीपुरीनाथम
0: कलये काशीपुरीनाथम।

0: विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव की जय।

0: जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वा गुरु परमांशि स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: फर्दर अबाउट द प्रेयर्स टुमारो।
1: A dál o modlitbě si budeme říkat
0: zítra. Om šanti, šanti, šanti.

0: Yes, Panditji, you are on the line. Floor is yours.
1: Panditji, tedas. Bolo. So.
2: सबसे प्रथम गुरुदेव के चरणों में शत-शत वंदन दीप नारायण भगवान की जय सदगुरु देव की जय आपका और हमारा सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सब यहां पर एकत्रित हुए हैं और सामूहिक भगवान का पूजन यजन यज्ञ वगैरह करने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं आपका और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जीवन के अंदर होने वाले सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए सभी प्रकार के पापों के निवारण के लिए आप और हम सब ने इस मनुष्य जीवन के अंदर जो मनुष्य अवतार प्राप्त किया है इस मनुष्य अवतार को धन्य बनाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जब आपने मनुष्य योनि प्राप्त करी है उस योनि का उद्धार के लिए ऐसे गुरु के चरण में आप और हम सब उपस्थित हुए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं और आपको और हम सबको एक अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं और आप और हम सब भगवान के बहुत करीब जा रहे हैं ऐसा आप और हम सब महसूस कर रहे हैं तो गुरुदेव के चरणों में शत-शत वंदन प्रणाम गुरुदेव आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यज्ञ हवन पूजन से आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है आप और हम सब जब भगवान की पूजा करते हैं भगवान के चरण में जाते हैं गुरुदेव की शरण में जाते हैं
0: नाउ वी डोंट नो एनीथिंग वी वेर ओनली लिसनिंग फॉर योर वॉइस अनुवाद करता हूं सो द Panditji said,
1: Panditji Asmanta.
0: First of the adoration to our Guru Parampara, our Gurudev.
1: Guru Paramparánknak fejezte ki tiszteletét.
0: Then said, we are all blessed one.
1: Aztán mondta, hogy mind áldottak vagyunk.
0: That we are all here together.
1: Együtt lehetünk itt.
0: And that we are here in the shelter of the Gurudev.
1: Hogy Gurudev hajlékában lehetünk.
0: Same time that he mentioned about 8.4 million different kind of lives.
1: Megemlítette a 8,4 millió létformát.
0: But finally we got a human life.
1: És annak a végén az emberit.
0: Human life should be very pure.
1: Az emberi életnek nagyon tisztának kell lennie.
0: You have to come to the God as pure you were.
1: Tisztán kell jönni Istenhez.
0: So he said we are lucky.
1: Azt mondta, szerencsések vagyunk.
0: And we are going to have some havan yagya puja.
1: Havanat yagya pujat fogunk gyakorolni.
0: And so let's go what he said in short sentences. ठीक है थोड़ा बोलना ताकि पूरा बताए
2: आप और सब हम सब यज्ञ और हवन पूजन के बारे में जानेंगे यज्ञ को करने से परमात्मा के बहुत ही नजदीक आप और हम सब पहुंच सकते हैं
0: While making the yagya,
1: yagyát végzünk,
0: ceremonies, we will have a easy access to God.
1: Ceremóniák által könnyen hozzáférünk Istenhez.
2: जीवन में आने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सब को दूर करने के लिए शास्त्रों के अंदर वेदों के अंदर मंत्र और यज्ञ की एक विधि बताई गई है अगर उस पूजन को उस विधि को और उस यज्ञ को सही विधि से सही प्रकार से अगर किया जाता है तो अपने जीवन की वो कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होती है

0: in life. Many times there's up and down.
1: Életben sokszor fe és lefelé szállunk.
0: There are different circumstances, different kind of situations.
1: Különböző körülmények, helyzetek vannak.
0: But through this, doing the yagyas, ceremonies, it will lead us to our destination.
1: Yagyák és ceremóniák által a célunkhoz érünk.
2: ये एक प्रकार का विज्ञान है. यज्ञ कुंड की जो गुरुदेव ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए, और साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का मुंह माना गया है. उस मुंह के अंदर मंत्रों के माध्यम से जब अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान की जाती हैं, तो अग्नि जो है वो उन आहुतियों को साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में अर्पित करती है, और आप जिस मनोभावना से वो आहुति देते हैं उस आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी मन की इच्छा पूरी करते हैं.
0: अकॉर्डिंग टू द दिस इज साइंस
1: टू द मैन
0: वैदिक साइंस
1: वैदिक टू द मैन
0: अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र एज I told before, he mentioned.
1: A vastu sastra szerint, ahogy ezt korábban mondtam.
0: Exactly, the yagya ceremony must be done in proper measurement.
1: A yagya ceremóniát pontos mértékek szerint kell végezni.
0: And in the proper scale. East, west, north, south.
1: Megfelelő terjedelemben az égtájakat figyelembe véve.
0: And that fireplace for the Yagya is like the mouth of the god.
1: Yagya tűzhely az olyan, mint Isten hegye.
0: And what the mantras is coming like from that supreme.
1: És a mantrák a legfelsőbbtől származnak.
0: And how you will think and you will offer your ceremonies there, that will become fruitful for you, liberating you.
1: Ahogy gondolkozol, amit ott felajánlasz, az gyümölcsöző lesz számodra, felszabadít téged.
2: शास्त्रों में बताया गया है कि देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन हैं. मंत्र जो हैं वो साधकों और ब्राह्मणों के अधीन हैं. अगर मंत्र की शक्ति के माध्यम से आप यज्ञ पूजन करते हैं तो देवताओं को निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है, और देव आकर के आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हुई चाहे सांसारिक हुई, इस जीवन की संपूर्ण कठिनाइयों को देवता दूर करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है. और शास्त्र और वेद पूर्ण रूप से सत्य है, सनातन है, और इस धर्म की मूल आधार स्तंभ जो माने गए हैं वो शास्त्र और वेद माने गए हैं, तो उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है.
0: द स्क्रिप्चर्स द वेदास उपनिषद एक्सेट्रा देयर मंत्रास which influences the devas.
1: Iratok, védek, upanishadok, bantrái hatnak a devakra.
0: Invite them.
1: Behívja őket.
0: And these mantras, these ceremonies is perfection by those scholars, so called the pandit.
1: Mantrák, ceremóniák olyan tudósok, akiket panditoknak hívunk, azoknak a munkái.
0: Through their perfection, the devas, through these mantras which will be chanted, devas have to come from the astral world or heaven or whatever you call, to that place where the yagya is.
1: Az öt tökéletes munkájuk által a déváknak el kell jönniük a mennyországból vagy az asztrális síkról arra a helyre, ahol a yagya van.
0: And through that chanting of that mantras and presence of the devas, definitely it will help you, it will remove your negative energy, remove your problems, and it is a way to liberation.
1: Mantrák zengetése és a dévák jelenléte által elmennek a negatív energiáid, és a felszabadulás felé haladsz.
0: So this is not only just what we call a mantra chanting, it is the science, it is sanatan.
1: Ez nem csak egy mantra zengetés, hanem tudomány, sanatan.
0: It is eternal.
1: Örök.
0: Unchangeable.
1: Megváltoztathatatlan.
0: It is the truth.
1: Az igazság.
0: Is that scriptures?
1: Ez van az iratokban.
0: That granthas.
1: A grantákban.
2: ये जब अनुष्ठान या पूजा या मंत्र जब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में अगर आप करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं तो इसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है. आप अगर एक आहुति प्रदान करते हैं तो 1,00,000 आहुतियों का आपको फल प्राप्त होता है. ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो धर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे आपको प्रशस्त करता है. तो ऐसे गुरुदेव की शरण में आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आप इस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें. ऐसा मेरा और गुरुदेव के चरणों में आप सबके लिए मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है.
0: सो सच ए अपॉर्चुनिटी, सच ए ओकेशन, सच ए सिचुएशन that such environment creates where this puja takes place. But if there is the presence of the Sadguru Dev, then one mantra's benefit appears to the aspirant 100,000 times more, not only once or twice. The one mantra, one ahuti, one offering in this fire, in the presence of the Gurudev, because Gurudev becomes your witness. And one mantra's benefit turns to you 100,000 times.
1: Az már önmagában
0: it
1: nagy.
0: Is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
1: Tehát a rishik, a szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Sadguru Dev jelen van, akkor egy mantra egy ahotta kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Sadguru Dev tanulja a mantrádnak.
2: Egy mantra ke madhyam se main apni vaani ko viram dena chahunga.
0: With his one mantra chanting, he is going to finished his speech.
1: Egy mantra zengetésével fogja befejezni.

कृपा। ध्यान करने के योग्य गुरु जी की प्रतिमा है, गुरु जी की मूर्ति है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा के योग्य सदा सर्वदा उनके चरण है, पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र के समान उनके द्वारा दिए जाने वाले जो वाक्य हैं, जो प्रवचन हैं, जो आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वो मंत्र के समान निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, और मोक्ष के समान मतलब इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के समान गुरु की जो कृपा है, वो उस कृपा से ही व्यक्ति इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मैं अपनी वाणी को इन मंत्र के माध्यम से गुरु चरणों में अर्पित करना चाहूंगा। आप सब एक बार बोलिएगा सद

0: बोलो मंत्र, बस इतना ही स्तुत।
1: गुरु जी का आदेश हुआ है, एक स्तुति आपके समक्ष माता जी की है, देवी की स्तुति है, उसको बोलना चाहूंगा।
0: इट इज वन प्रेयर
2: इमा
0: एडोरेशन
2: वोदोलात
0: ग्लोरी
2: दिचोइतेस
0: टू डिवाइन मदर
2: दिश्तनी अन्यानक।
1: ललिता त्रिपुरा सुंदरी की ये स्तुति है। इस स्तुति के अंदर यह बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र किसी प्रकार से भी नहीं जानता हूं, पर मैं अपना सिर आपके चरण में अर्पित करता हूं। मैं आपके चरणों में अपना संपूर्ण शरीर मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए।

गुरु पूनम का पर्व आप सभी को ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की ओर से आशीर्वाद ब्लेसेड सेल्फ स्पिरिचुअल सीकर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड टुडे ऑन दिस होली ओकेशन ऑफ श्री गुरु पूर्णिमा ब्लेसिंग इज कमिंग फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा होली लैंड भारत वेलकम ऑल ऑफ यू हियर एंड those who are in other countries. The Guru Purnima has many meanings. First, what Upanishad and Veda says, Tamso Ma Jyotirgamaya, lead us from the darkness to the light. Agyan se gyan ki taraf. Aradhya Gurudev, Sri Swami Madhavanandji Bhagwan, kehte the, gyan hina pashu shamana. Without knowledge, one is like an animal. Knowledge is the light. And ignorance is the darkness. The light of the knowledge is not this physical light which we see with our physical eyes. But it is the light which is within ourself, in each and every entity. But out of 8.4 million different creatures, humans have got a special body and got a powerful tool. That's called intellect. But the intellect, buddhi jo hai, buddhi ko gyan, vidya chahiye. Buddhi ko jaisi siksha, jaisa gyan deoge, vaisa hi vyakti sochega, banega. What kind of education you will get, like that you will be and you will think like that. In the police training, the policeman goes, he gets the training for the police, how to act, how to behave, how to be. His thinking, his knowledge, a training makes him a police. A driver gets the knowledge how to drive and he becomes the driver. So the driver, similarly, चोर को भी ट्रेनिंग मिलती है तो वो चोर बनता है आतंकवाद बनता है या और भी बनता है जैसी शिक्षा मिलती है
Therefore, the intellect needs a particular education. Second, the education for the humans is very important, and that is the spiritual and ethic principles, where one understands the value of the Sanatana values makes the human a human. So this, the education is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master, and in Hindi we say guru. That's all. Jagda keval bhasa ka hai aur kuch bhi nahi. Aap Ramayan Gita padhoge to musliman shayad nahi samjhenge, swikar nahi karenge. Aur agar wo Quran Urdu padhenge to aap swikar nahi karoge, kyun aap nahi samajh rahe ho. Baat wahi hai. Achhi baat रामायण भी कहती हैं, अच्छी बात कुरान भी कहती हैं, बाइबल भी कहती हैं. डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज. इट्स ओनली वन. एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कोई है. दूजा कहता है कि मारी मामी है, कोई है. तारा मामा री बू है, कोई. मारी माँ है, मामी नहीं कहना. एक है हमारी दादी है, एक है हमारे माँ है, दूसरे कहता है हमारी बेटी है, तीसरे कहता है हमारी बहन है, और दूसरा कहता है हमारी बुआ है, दूसरा कहता है हमारे काकी है. आंटी नहीं ये बेटा, आजकल कह के आंटी, ये आंटी थारी बापरी. आड़ी क्यों गंदी गंदी बात करो, है काका काकी भाजी भाजी वो करो. लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है, हमारी पोती है. है वो महिला एक ही है कि नहीं? एक ही महिला है. नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया. दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है, बट है वो एक ही. सिमिलरली गॉड इज वन, व्हिच गॉड हैज नो नेम. And all are talking about a God for oneness. So this education, the ethic and spiritual education, we get in the Gurukul. Gurukul means school. अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है. नहीं बाप जी, हमारे गुरुकुल में नहीं जानो. हाँ, हमारे स्कूल में जानो है. उन्होंने ठा तो है को नहीं. बाबूजी मां टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ानी, अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी. कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरों ने नौकरी नहीं लागे. नौकरी पड़ी खाडा रे माए. मनुष्य बनाओ बच्चे को. आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, ને અંગ્રેજી પડી રહો તો ફેરે મને ઝાડુ લગાવવાની કોઈ નહીં રાખે. ઇસલિયે દુર્ભાગ્ય હૈ કે હમ હમારી સંસ્કૃતિ કો છોડ દિયા. ઇસલિયે કે તુમ્હારે પાસ ગુરુ જ્ઞાન નહીં હૈ. તુમને વો જ્ઞાન સિખા, તુમને વો સંસ્કાર સિખે, જો સંસ્કાર તુમ્હારે કો आगे नहीं बढ़ा सकता है. क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा. संस्कारों से संस्कृति बनती है, और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है. संस्कार

आज तो बस नौकरी चाहिए, पया अंग्रेजी बोलो, नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न केवल अंग्रेजी में भाषण दो, नहीं नहीं मैं हिंदी में बोलू बाप जी, बोलो आदि कचरी है? हमें अंग्रेजी बोले, मैंने कहा मैं रस्त पूछ कर जानो के स्टेट, अरे बाबा जी स्टेट जाओ, अरे की स्टेट में जाऊं, गुजरात में जाऊं कि राजस्थान में जाऊं कि मध्य प्रदेश में जाऊं, हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रही, स्टेट स्टेट आ थोड़ी अंग्रेजी, अरे पूरी सीखी नहीं। बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं तो वो टैगोर साहब को कह रहे मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी, वो 4 शब्द नहीं कियो और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल गो है, तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी भूल गया, हमारी मातृभाषा है उसके द्वारा ही, उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है, हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी। कहा है कि बणियाणी रेसी नहीं, रेसी सुधारी, होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी है, कि बणियाणी रह नहीं ने रेसी सुथारी, आ होनारी परी जाई क्या बाबी कुमारी, कौन कह रही है, रावण को, रावण की पत्नी के, रावण तू बना करके हट करके सीता को लाया, वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है, रेसी सुथारी थारी है वो ही रहूंगी है, हट करियो तो होनारी लंका परी जाई, कौन कहवे कुंभकर्ण की बाबी मनोदरी के रही है, तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो, बुद्धि ज्ञान उसमें ज्ञान भरा है संस्कृत के अंदर में, एनी हाउ सॉरी दैट आई हैव टू स्पीक बिटवीन इन हिंदी एंड संस्कृत, आई डोंट नो सो आई हैव टू स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश बिकॉज ऑल ऑफ यू, but I'm telling these Indians, they should learn their mother tongue and then after they should learn English. They don't know English and they forgot the Hindi. I asked someone address, I have where it, which the direction is going there, well, where is that place? So say state. State is not a path, direction is straight. But wo straight to aata nahi hai. और महाराज जी वो क्या कहते योगा के अंदर हमें, तो हम कहते हैं अच्छा भाई, अरे भाई गाड़ी चलाओ कॉन्सेंट्रेशन करो, तो वो क्या कौन सा स्टेशन, अरे बाप जी कौन सा स्टेशन चल रहे हो नहीं, लो कॉन्सेंट्रेशन ने कौन सा स्टेशन, आ थोड़ी अंग्रेजी ने आ थोड़ी हिंदी, सही बात है कि नहीं, इसलिए दैट्स वाई गुरु पूर्णिमा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, सनातन वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन एबिलिटीज, दिस इज अ गुरु पूर्णिमा एंड देन इज अ वर्शिप्ड of that divine who gave you the knowledge, then is the birthday of Bhagwan Vedvyasa and every disciple adores, remembers to keep this living culture.
So Guru Purnima is a festival of the culture. To protect the culture is called a living culture. Sanatana Dharma is a living dharma. Sanatana Dharma is a living dharma. What does it mean? What means the living dharma? One mother gives a birth to a child. It is the dharma of the mother to give a birth to the child. It's her dharma, wo sanatan dharma. A one tree gives you fruit. It is the dharma of the fruit tree to give the fruit. एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्ची को जन्म देती है, वो उनका धर्म जो है वो सनातन धर्म है. और इस युग के अंदर, इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है. कौन सा गुरु? थारा मास्टर स्कूल में. स्कूल के मास्टर आपके गुरु है. इसलिए और सभी सिस्टम विल स्टॉप ब्लॉक, बट द सनातन धर्म गुरु एंड डिसाइपल विल एवर एंड एवर विल लास्ट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इटर्नल रिलीजन ऑफ सनातन. द रिलेशन ऑफ द मदर चाइल्ड हस्बैंड wife, nature, etc., etc. Therefore, the Guru Purnima has a great meanings than other any festivals. हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी. वो एक की जन्माष्टमी मन रही है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरबों महर्षि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी. वो ही इसीलिए दैट इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल. दैट्स कॉल्ड लिविंग फेस्टिवल. गुरु पूर्णिमा इज लिविंग फेस्टिवल, जिंदा. और सब संप्रदाय चली जाएगी, लेकिन ये सनातन संस्कृति कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि ये शिष्य और गुरु का नाता है. आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद. आप आए, यू केम ऑल, वेलकम. नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, देन आफ्टर विल बी भजन, एंड भजन के बाद में आनंद, और आनंद के बाद में जागृत. तो जागृत, सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा. कोई तो करेगा ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ है. तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यहीं पे होना के बाबूजी कमरों के कमरा तो गले जा हुई जा. कमरा की कोई कमी नहीं है, हमें तो कमरा खूब है. माँ कोई नाग देवता बैठा वेला तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है. जब को ध्यान राख जो भाई सरप अरप आ जाता है, इसलिए इधर उधर जाते हो. और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर. ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना. अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा. कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठो तो. इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है. भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना. सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे
8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां सभी सज्जन आएंगे, दर्शन करेंगे, तो कार्यक्रम चलता रहेगा। अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, इफ यू वॉन्ट टू लिसन द भजन्स देन इट विल बी वेबकास्ट एंड भजन्स वेन एवर यू लाइक, यू कैन पुट ऑन योर टेलीविजन एंड यू कैन सी और हियर द भजन। बोल सनातन धर्म की जय, सत गुरुदेव की जय।